0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।

0: Good News FM 105.1 MHz.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम वरदान, प्रस्तुता कुमार अब्राहमको साथमा।